0: तुम आपे ग्रह सो होई,
1: तद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी, तद आपे सिज सब गोई।
0: जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानो आसा महला चौथा। तुम कर

0: जन नानक गुरमु प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर्वड़ पहिले नवासा पानी पावक तिन है किया।
1: पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले।
0: मन एक न चेत समूड मनाहर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा।
1: ना हो जति सती नह मरिया मूर्ख मुगदा जन्म पया।
0: प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा

0: करोत्तत पारा
1: हमरे दुष्ट से बैतम काबहो
0: आभात दय मोहे बचाबहो
1: सुखी बसा मोरो परिवारा
0: सेवक सिख सब कर तारा
1: मोर इच्छा निज कर दय करिये
0: सब वैरण को आर संगरिये
1: पूर्ण होई हमारी आशा
0: तोर भजन की रह प्यासा।

0: पूजो सदा हमारे पच्छा
1: श्री अस्त जो करिए हो रक्षा
0: राख लेहम राखन हारे
1: साहिब संत सहाय प्यारे
0: दीन बंध दुष्टन के हंता
1: तुम हो परे चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा बबतरा
1: काल पाए शिव जीव अवतरा
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा।

0: शिव कन को सब गुण सकतियो
1: सतरन को पल मोबद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत
1: भले बरे की पीर पछानत
0: चीटी ते कुंचर स्थूला
1: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी
1: सुख पाए साधन के सुखी
0: एक एक की पीर पछान
1: कट कट के पट पट के जाने
0: जब उत्कर्क करा कर तारा
1: प्रजा तार्थ तब देह अपारा
0: जब आखर्क करत हूँ कब हूँ
1: तुम मैं मृत दे तब सब हूँ
0: जेते बदन श्रेष्ठ सब तार
1: आप अपनी बूझ उचारे
0: तुम सब ही ते रहत निरालम
1: जानत वेद वेद और आलम
0: लंका निरपकार निर्लंभ
1: आद अनिल अनाद असंभ
0: ताका मूड उचारत पेदा
1: जाको पेव न पावत वेदा
0: ताको कर पाहन अनुमानत
1: महामूड कश वेद न जानत
0: महादेव को कैत सदा सेव
1: निरंकार का चीनत न पेव
0: आप अपनी बुद्ध है जेती
1: परनत पिन पिन तोहे तेती
0: कमरा नखना जायप सारा
1: कह विद सचा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूप
1: रंग पयो राव कही रूपा
0: पंडित जेरज से तजकीनी
1: उत्पज खान भोरा दीनी
0: कहू फूल राजा है बैठा
1: कहू समिख पैव शंकर कैठा
0: श्री श्रेष्ठ दिखाए अजम पव
1: आज गाज स्वरूप स्वयं पव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो
1: सिख उबार असिख संगरो
0: दुष्ट जिते उत्पात उत्पाता
1: सकल मलेच्छ करो ऋण काता
0: ये अस्पृष्ट अवसरनी परे
1: तिनके

वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण त्याय जिस टिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नानक आवे थाए। सब थाए होए सहाय। तसे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी सब थाए होए सहाय। तसा पातशाह दी जागती जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ दी दरदा ध्यान करके बोलो जी। पांच प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाई देख के अंडट किता तिन्हां प्यारियां सचारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटवाई खोपड़ियां नहाइया चरखड़ियां दे चढ़े आरिया ना चराए गए गुरुद्वारे की सेवा की कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग निभाए तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चित आवे चित आवा का सदका सर्व सुख होवे जी। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रशारे आए देख देख पते बिरद की पैच पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोल पाले बोलना जी। हे वाहेगुरु जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान पपेक दान विसाहो दान भरोसा दान ताना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहेब बोलो जी। सतगुरु जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां ते जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा तान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाण्या दे मान नितान्या दे तान नियोटियां दी ओत सच्चे पिता वाहिगुरु जी आप जी दे जूर आप जी दे बच्चन ने संध्या समय सोदर रैरा साहिब दे नितनेम कीते हन बाणी पढ़दियां अनेक प्रकार दियां गलतियां हो गईयां ने आप अनजान बच्चे समझ के माफ कर देना जी अगर तो समर्थ बख्शनी जी। भाई गुरशांत सिंह जी कनेडा वाले पिछले एक हफ्ते तो गुरमत कैंप विखे बच्चे नूं पढ़ाउण दी सेवा कर रहे हन आप जी कृपा करनी इन्हां दी सेवा थाएं पाउणी अते इन्हां नूं नामदान विद्या दान अते गुरसिक्खी जीवन बख्शना ताकि होर वध चढ़ के ये सेवावां कर सकन पिछले ओगन बख्श लई प्रभ अगे मार्ग पावे। वाहिगुरु जी आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देख सजा के हाजिर है करी पक्षा सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राय आप जी का भोग लग्या प्रसाद साध संगत विच वरते जो जो छके सो आप जी का पवित्र नाम जपे हुन अपना पवित्र हुक्मनामा बख्श के संगतां नूं निहाल करो अते अज का समागम आरंभ करन की असीस बख्शो। सर्व ते कारज रास करने सही प्यारे मेरे जिन्ना मेरे तेरा नाम चित

जाए भव जल बिकसन बिकम असगाहो गुरु शब्दी पार पाए जिनको लगी प्यास अमृत सही खाए कल में हो पुन गुण गोविंद गाए सबसे नु कृपाल संभाले साए साए।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सत संगत बड़भागी माई भाई जिन्होंने समा मिलया है भाई शाम के दीवान हाजरी भरन का सतगुरु रहमत कर सारे की हाजरी दर प्रवान कर दरों करो नाम की दात गुरसिखी जीवन बख्शन साहिबान बख्शिश भरया हुक्मनामा आप संगत वास्ते बख्शिश किया है कि औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले जिहड़ा उहदा हो जाता है जिन्हें उस महाराज की ओट तक ली है सतगुरु नूं कदी भी औखी घड़ी देखण नहीं दिंदा। सो आओ उसने चरणा नाल जुड़िए अते गुरु कीआं खुशियां प्राप्त करिए। इस दे नाल ही जिस तरह आप सारे जानते हो शहीदी हफ्ते जा रहे ने शहीदियां भरिया दिन तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सरताज ग्रीनवाज का शहीदी दिहाड़ा जो है वो मंगलवार वाले दिन ट्यूजडे आ रहा है। अगली वीके जिन्हां दे अखंड पाठ आपां ऐतवार शामां नूं प्रकाश करने ने अते भोग पैणे ने ट्यूजडे शामां नूं। सो बेनती है सारे ही माइपा दे चरणां च भाई जो भी रेडियो राहीं सरवण कर रहे हो आओ उस महान गुरु दा शहादत दा दिहाड़ा वध चढ़ के मनाइए गुरु की खुशियां प्राप्त करिए। आओ हुण मेरे सत्कारयोग अजीज वीर भाई साहब भाई सिमरनजीत सिंह जी उन्हां पासों आरती अते कीर्तन सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

तेरा चले। जय मुस्कुर होवे तो पारी हर को नाम खिर माय उदारी अनुपुंचन करत नि तेरा हर को नाम कोड़ पाप पर हर। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाप सुख नेरे। सगल सुख को राजा दुखी हर का नाम जप तो होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे हर का नाम।

तो बाह्य छूट नहीं कोट लख बाहे नाम जपतः पार पराहि अनुक भगंदाय आय संघार हर का नाम तत्काल उदार है अनुक जोन जन्म मर जाम नाम जद पाम विश्राम हो लमन कवन तो वह हर का नाम कोट पाप खो वह ऐसा नाम जपो मन रंग नान पाई साध कह संग जय मर कगन जाहे ना को सार का नाम वहां संग तो सा

तो बरखाय भगतना के बर्तन नाम संजना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदर जन कोट हर जस करत संत दिन रात

केन्द्रमलयुक्ता ब्रह्मज्ञानिका बोधन ज्ञान नानी ब्रह्मज्ञानिका ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी कुपरास ब्रह्मज्ञानिका नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानिका गृह संवाह ब्रह्मज्ञानी पर्व करो माह ब्रह्मज्ञानिका नहीं दंदा ब्रह्मज्ञानी लता उठ बंदा

अपेक्षा नेत्र संग हेत करना सुन का निंदा सत्य ध्यान अपस्को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर रह मन के भाषणा मन ते डरा इंद्रिय जस पे रासना रिकोड में देखो है सा पर सुनो सो जिस पर सो पर सन बिशन की माया ते हो भिन्न कर्म करत हो न करम तिस वसन का निर्मल धर्म काहु बल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भगत कीर्तन संग राचा है।

करें कई कोड़ माया शर्म आए कई कोड़ परदेश फरमाए जिस लाभ तत् तत् लगना नान करते कि जाने करता रचना कई कोड़ सत जति जोगी कई कोड़ राज रस भोगी कई कोड़ पंख द्रव पाए कई कोड़ पाथर बिरख नि बजाए कई कोड़ पुण पाणी बल सुंदर कई कोड़ देश भूमंडल कई कोड़ सस्य सुर्ण खतर कई कोड़ देव दान मंदिर सर शतर।

सदा सदाई कंगार कई कोड़किन भव पात प्रभु ब्रह्म समाता कांतन धन कोय आपे आपना प्रभु सोये कई कोट पार ब्रह्म कह दात नातम प्रकाश कई कोट तार कवे सदा निहार है को नेत्र कई कोट नाम रश्मि अमर पैसा सदे जीव है।

ब्रह्मचर्यास्पदि कर्ण करावन करना जोग जोत पाव सोई होग किनमें थाप ताप नारा अंतनी गित पर बार कुमें तार दर्रा हवे कुमें उपदे कुमें सुमावे।

बालस्क्रमानिको बरकरे आस परवितर तांका होए विनाश सबते आप जाने बलवंत किरमे होए जाए पसुमंत किसे न बते आप अंकारी तरम राज करे खुआरी गुरु प्रति

दुखन सुख सब जाए संग दुख नरक में पाए संग दुख न मातो है मले संत के दुखन सो बात ही न संत के तक रखे न कोय संग दुखन तान प्रस्त हो संत कृपा कृपा दे करे नान संत संग नंदक बीतराय संत के दुखन तम को पवाए संतन के दुखन का जो लवाए संतन के दुखन सुरब जोन पाए संग दुखन त्रिक जोन करमाए संत के दुखन तृष्णा में जलाए संग दुखन सबको चलाए संग संत के दुखन ते सब जाए संग दुखन नीच न जाए संत दुखी का था को नाय नान सुन पावे था पिगत पाए संग न दुख मात ताई संग न दुख न दुख न पाए संग न दुख मात तेरा संग न दुख परमेश्वर मारा संत के नंद राजते संत के नंद दुखियार दिन संत के नंद को सर्व रोग संत के नंद को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दुख नान सुन पावे तस्का भी हो मोख संत का दुख सदा पवे संत का दुख किसे का नहीं मित संग दुख को डाल लागे संग दुख को सब त्याग संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म अमरा संत के दुख न सुख सुख ते टराय संत का दुखी को नाही ठाओ नान सुन पावे तन ले मिलाए संत का दुख बीते जुटे संग दुखी किसे का नहीं पहुंचे संत का दुखी के काज न पहुँचे संग दुख को ध्यान परमाइए संत का दुख उजड़ पाइए संग दुखी अंदर ते थोता ज्यो सास बिना मृतक के लोथा संत के दुखी की जड़ कितना है अपन भी जापे ही खाए संग दुखी को अपना राखन आर नाम संत पावे धन लय बार संत का दुखी में बिलड़ाए ज्यो जल बिन मछली तर फड़ाए संत का दुखी बुखा नहीं रात दे ज्यो पाव के धन नहीं त्रापा संग दुखी चुटका खेला ज्यो बुआर तिल खेत माए दोहेला संत का दुखी धर्म तेरा तो संग दुख समित कहते कीर्तन दुरी पया नान ज्योति पावे सोई थी संत का दुखी बिगड़ रूप जाए संत का दुखी को तरका मिले सदाए संत का दुखी सदा सा खाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए

नमस्कार है प्रभु के उदय करो दिन रात सत्यावसागर सब विद्वत का किया जैसा करे तैसा कौतिया अपना खेल आप करने और कौत दूसरे कौन का है विचार।

दुर्गा नानक जन्म तरण भागे ते दंदगमा है सदा सदार के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार सतनमंद गणि संसार मन तन मुख बोले हर मुख सदा सदा जान ते सुखी एक एक एक पहचान तुझके सोच जी जान नाम तंग जिसका मन माने नान ते निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सूझे तिसके जान तृष्णा बुझे सात संग राजस कह सर्व रोग ते हर दिन रात अंदर कीर्तन के अल्प ख्यान के उसमें सोई निर्वाण एक उपज जन की आसास की गठी जमकी भाषा पर्व की जिसमन भूख नान जिसने लागे दुख है जिसको हर प्र मन चित्याव सो संत सोहेला नहीं डुलावे जिस प्रपना कृपा करे सो सेवे को किससे डरा जैसा सत सदाय अपने कार्य में आप समाया सो दसो दत्त सो दस सीधिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तब सब कुछ बोल रहे नानक सो सुखम सोई अस तोलने के जन्म मैंने कि तुम्हारे अपने जलता पी करे आवन जाम दृष्ट अंदृष्ट आग्रह करी तारी साहब श्रेष्ठ है

संसार उधर तेरे मन प्रभु का सेव सगल उदाहरण प्रभु के सेव दुख विचार ना पे मिल ले कृपा गुरु का सदा पहने हाल उनकी सेवा सोई लागे जो सुनो कृपा करें बड़ पागे नाम जलपा में विश्राम नान तन पुरखो तुम कर माने जो के करा सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह स्वभाव सोए करने हर पछाण सोए प्रभु का केदर मिट लगाना जय सा सत सद जित समाज समाज

चिंता ते सुनमाए ते सेवरता कोई ना ही रे मन मेरे सुधार दा पवना से प्रभु आपे आप आपन किया कछ ना होए जे सपना नहीं लुचे कोई तुझ बिना ही तेरा कछ काम गत ना नहीं जपे कर नाम रूप वंत होए ना ही मोए प्रभु की जो सकल कर सो है तन मन तावे क्या को कर भेज सब को तुझका दिया दर भय असुर देखो कहा प्रभु की गला बिना किताब है देखो होए बह दाता ते दिन अर्जन का भार जैस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नान सोजन सदा रोग जय मंत्र को तम तम गुर का शब्द मन संबंध पका

गर्म पंजा का नेत्र भूर जिसका मंत्र न जाना हो रे आनंद रूप मंगल सजा का सर्व तो सुनिए करता के राज में राज योग में जोगे तम में विश्व के उसमें भोगी त्याय त्याय भगत सुपाया नान तुझ का अंत न पाया जा के लिए

नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगाज पाताल नाम के तारे सुगले कार नाम के तारे प्रिय सपन नाम के संग उदर सुन सरवन कारगर बाजे सपने नाम लाए नानी चौथे पद में सो जन गात पाए रूप सा जंका सत्य तन पुरुष सत केवल वरदान करतूत सत सत जाके बाणे सत पुरुष सब मैं सुमाणी सत कर्म जाके रत्न सत मूल सत सत उत्पत सत करने निर्मल निर्मल जिस सब जाय तिस सब भली सत नाम प्रभु कै सुखदाई विश्वास सत नान गुर तय पाई सत वदन सत उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत नित बुद्ध देखो नाम जब तंगे गत होय आप सत किया सब सत अपने अपनी मित गत जिसके सिर सुकरने हर वर्णा भूत करत विचार

मार अपने जन का पर्दा ढाक अपने सेव के सर पर राख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेव को नाम जपाई अपने सेव की आपद राख ताकि कदम को न लाके प्रभु के सेव को न पहुंचे प्रभु के सेव को उचे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दुष्प्रगटाया निकी गिरी में कदरा के बसम करे लस्कर कोट लाख।

सोय काय सोत करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विंडाणी बारंबार बार प्रज पिय पिय अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन गुरु उपाय नाम तान नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग

कपूर्णवदसे पहुंच चुकाने रोए बसे सगल प्यामन तक है नसे जिसका सातन कृपा तारे सा संग अपना मरारी थे पा चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हजा सर्वंदर को नाम सरगन प्यो करता दिन सगली मोही अपने प्रभाव बनाए अपने कीमत आप पाए हर बंधु जनाई कोय सर्व निरंतर को सोए आओ

जैसे तन को चार कंट्रोल में सो तन सेवाते पावे जैसे सुख को नित बाछ मीत सुसु साधु संग परित जैसे सब को करा पहले करने सब बदर

ब्रह्मेश्वर दापुर सदा सा प्रभु के गुण गाव सा प्रभु में दया वचन कमल सोला गय प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओटे को आधार नानक मंगे न प्रभु सार प्रभु की दृष्टि में सुख बिरला को जिन चाख्या से जिन तृप्ता ने पूर्ण पुरख ने डोला ने सुपर परे प्रेम रस रंग के संग पर सुरान सब त्यागन त्रिप्रकाश सुंदर विलाग बड भागे जपया प्रभ सोए नानक नाम रत सुखो सेव के मसा पूरी पे सगुरत निर्मल मत लई जन को प्रभ दयाल सेव के न सदा निहाल बंधन काट मुद जन पिया जन्म मरण दुख भ्रम गया यजपनी सरदा सत सब पूरी रव रिया साधु संग हजरी जी का सत लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिस्र दे काल न पान सो क्यों बिस्र दे किया जाने सो क्यों बिस्र दे सब कुछ दिया सो क्यों बिस्र दे जीवन दिया सो क्यों बिस्र दे अगर मैं राखे गुरु पर था को बिरला राखे सो क्यों बिस्र दे बिगते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे

विशेषा चरण तो भगजन के मंथन रंग बिरला को उपाव संग एक बद जकर मया गुरु प्रसाद नाम जपने था कि उपमा कही न दाय नार गृह सर्व समाय प्रभ संत दीन दयाल भगत सदा कृपाल है।

अगम अपार अपना से सुखे अपना संता जन मन को काम बिना संध्या पूर्ण करता प्रभु सोए तब धमके त्रास कहो कैसे हो जब अभिगत गोत्र प्रभु का तब चित्तर गोत्र पूछ लेखा जब नान निरंजन गोत्र का तब कौन चुड़कन बंधन बांधे

अपे अछेद अपे सुमाया वहां के व्याप समाया को आप गुण का ना ही प्रवेश जय कह के भगवंत कौन है चिंत किस लागे चिंता जय आपन आप आपत्यारा थे कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बिंदु थे उच्चा नानक आप को आपे पहुंचा जय आप रचे प्रपंच कार।

देखा खेल संकोचा तो नानी के क्या दया भगत भगत अवध्या पसराप सारसन प्रताप दोहो पाख का आप है तनि उनकी सोभावन हो बनी आपे को तो करे आनंद चोज आपे रस भोजन जोग जैसे

अनाद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भोगत ज्ञान दया भंडारण घड़कड़ वज है नाद आप नाथ नाथी सब जाके रिद्ध सिद्ध अभरासाद संयोग विजोग दोए कार चलाव है लेखे आव है भाग आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई धी बाण जिब तस भाव है तिवह चलावै जब हो वै प्रमाण

आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सोए का वार कर कर वेखै सुरजनहार नानक सच्चे की साची कार।

काल सलोक पावन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेल सगल जगत।

है, निधान है, त्रवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंब है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाथे, समस्ति वैपूते, कलंकों बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शास्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखी अपर्मी अपोगी अपोगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तु स्नानु, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सच्चिदानंद सर्व परनासी, अनुपे अरूपे समतुल नवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता, अदो उर्ध अर्धं अगु ओग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामु अकामु, समस्तो पराजे समस्तास्तताम, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमस्तुं निरनाथे, नमस्तुं परमाथे, नमस्तुं अगंजे, नमस्तुं अपंजे, नमस्तुं अकाले, नमस्तुं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोके, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञान, नमो परमतान, नमो सर्व मंत्र, नमो सर्व जंत्र, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्ण, नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे, नमो जीव जीव, नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे, समस्तु प्रसिजे, कृपालु स्वरूपे, कुकर्मु प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्ध नवासी, चार प्रशांत तो प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अकाल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अकाल धर्म अलख कर्म, सर्वु दाता सर्वु ज्ञाता, सर्वु भाने सर्वु माने, सर्वु प्राणु सर्वु त्राणु, सर्वु भुगता सर्वु जुगता, सर्वु देवु सर्वु पेबु, सर्वु काले सर्वु पाले, रूवाल छंद तो प्रसाद, आदरूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार, सर्व मान त्रमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जत्र तत्र वराज ही अब तू रूप प्रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख आधार मूर्त अजोन आद असेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा बिसा होय फैलियो अनराग,
ਨਾਮ ਕਾਮਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂ ਨਹਿ ਜਾਹੇ ਸਰਬ ਮਨ ਸਰਬਤੁਰ ਮਾਨ ਸਦਾਵ ਮਾਨ ਤਤਾਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਦੇ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਜੈ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਣਹੀ ਕਹਿ ਜੇਬ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤਰ ਚੱਕ ਮਾਨਈ ਪੁਰਤੀਨ ਲੋਕ ਚੌਧਹਿ ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜਿਹ ਜਾਪ ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹ ਥਾਪ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਬਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸਵਯੰ ਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨੋਸਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਬਤੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਗਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸਾਹਿਤ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਜਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨੇਤ ਭਾਗਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਸਤਰ ਨ ਆਵਹੀ ਬਹੁ ਚਿਤ ਮਧ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੁ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨ ਹਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਭਾ ਅਭੰਗ ਗਤ ਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਗਨ ਉਦਾਰ ਮੁਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਆਲਿਸਿਆ ਕਰਮ ਆਦ੍ਰਿਸਿਆ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਪਰ ਨਾਢਿਆ ਅੰਡ ਅੰਡ ਵਾਢਿਆ

सदा अंग संगे अपंगं बभुते दोकालु परणसी दयालु स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बभुते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सदान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के सार ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप अतंग सरंग सवारे कोड तरंग करंग से कूदत पौन के गौन को जात नवारे पारी पजान के भूप पली बिदन्याबत शेष न जात बिचारे एते पहे तो कहां पाए भूपत अंत को नंग ही पाए पधारे जीत फर सब दे सदसान को बाईत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हंसत ही है राज हजारे भूत पवैख पवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान पजे मन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेखा वेद परान कतेब करान जमीन जवान सवान के पेखा पान आहार जते जत तार सब सविचार हजार क देख श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख शुद्ध सपाह दुरंत दुबाह सो साज सुना दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरी नमरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे यार अपचार सार की तार पछैया तोर तो दे समलिंद ममासन माते गजान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव बनिंदन साचर भूत पवैख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन परता पुन बाढ़ जैत तुन पापन के बह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फेरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन तुरलोक को राज करेंगे कोड़ स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म बहेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जय नर श्री पत के

ना हाथ फिर लिये सार समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सब ऐसे बतायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लपाहन पूज धरयो सिर काहू लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह कुशीस नवायो को बतान को पूजत है पस को मरदान को।

0: स्वाद विजोग स्वाद को स्वाद को स्वाद से तो स्वाद सलाहा स्वाद उजर स्वाद रहा
1: विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुजन पूरे पहाग मोहल्ला पहला
2: कुदरत दिशा कुदरत

पौड़ी अपने पोग पोके होए पसमर पौर सुधाया वड्डा होवा दुनिदार गल संगल कच्चलाया अग्गै करनी कीर्तवाचिये बहले का कर समझाया।

0: निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहे जिना मन चाओ
1: सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी करन लगाए पार

और ही सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिसु दे तिस मिले सच तत नी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जान मन मुखी जन्म गवाया

0: महाका कौन मोहे कर मोहे पितरी दे अगे बस जानिए पितरी को करे बड़ी है हाथ लाल के बस पिए करे
1: नानक के सो मिले जे खटे काले जे भला पैदा
2: जो जो रुसरावणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख से नित धोय कुआर सुचे ना किए बैंड जे पिंडा तोय सुचे ही नानका जिन मन वस्या सोई पौड़ी तुरे प्राणी पौण वे घर रंगी हरम सवार कोठे मड माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पाऊं दे।

0: पाए नानके की बाहरी हो दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए
1: शुद्ध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु
2: जी की
1: फतेह।
2: गुरु प्यारी साध संगत जी साहबां दी रहमत होई है आप संगतां ने श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरुद्वारा साहिब फ्री माउंट तों सरवण कीते हन आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग रागी भाई सरबजीत सिंह लाडी श्री दरबार साहिब वाले समूह जथेदार बहुत बहुत धन्नवाद। सो आओ हुण सतगुरु साहिब जी वालों बख्शमुख बाग दी कथा आप संगतां नूं सरवण करवा रहे हन सत्कार योग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले उन्हां पासों सरवण करिए जी। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है जो कि साहब श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जिन्हां दे शहीदी पुरब गुरु घर विखे 16 तरीक मंगलवार शाम नूं मनाए जाने हन कल ऐतवार शाम नूं श्री खंड पाठ साहिब आरंभ होणगे जिन्हां दीआं संपूर्णतावां मंगलवार नूं होणगीआं उपरंत जो विशेष दीवान शहीदी पुरब संबंध विच होणगे ਸਵਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ

जो तू देह तही इहो तृपतै आन न कतहु तावो सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल एण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता अपन ता प्रभ अपना लहिया सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजमा कर दूजा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अबर कछु मेरे संग न चाल मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज मार अनेक भोग रस सगल तरबर की शाम ताए ताए बोबिद को तावे सगल निरार्थ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो जिसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे बिश्राम टोडी महला पंजमा प्रभ जी को नाम मने सधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन एह हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरे परवार नाम सिखाई सदा मेरे संग हर नाम को निस्तारे बिखे बिलास कहियत बहुत तेरे चलत न कछु संघारे इष्ट मीत नाम नानको हर नाम मेरे पंडारे टोडी महला पंजमा नीके गुण गाओ मिट ही रोग मुख उजल मन निर्मल होई है तेरे ओ रहे इहां उहां लोग रहाओ चरण पखार करो गुरु सेवा मने चरावो भोग शाड़ आपत बाद अहंकारा मान सोई जो होग संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग कहो नानक एक बिन दूजा अवर न करने जोग टोडी महला पंजमा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूजै दूजी ठहर हार पर्यो तो द्वारी लिखा छोड़ लिखा छूट है हम निर्गुण लिहो भारी सद बख्शंद सदा मेहरबाना सबना देह अधारी नानक दास संत पाछे पर्यो राख लिहो ए बारी टोडी महला पंजमा रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज सुख मन सुख रह शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन रहाओ जो मांगे सोई सोई पावे शिव हर के चरण रसायण जन्म मरण दुहू ते छूटे पबजल जगत तरायण खोजत खोजत तत विचार्यो दास गोविंद परायण अबनासी खेम

शिव के बाण सिर काटे उर हाउ काल जाल जम जोहे न साके सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किचन खुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया अगम निगम कहे जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजमा किरपन तन मन किल बिख परे साध संग भजन कर स्वामी ढाकन को इक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित

भगवत चाहे वे उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजमा, हर के चरण कमल मन त्यायो, हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को।

सुसमरथ कथ गुज जो पिन तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक अरदास तलंग महला पंजमा करती जंग करते कुदरती मुस्ताक दीन दुनिया एक तुई सब।

हर कीरत गाए कर चानन मग दिखाया। होमे मार एक लेवला की अंतर नाम वसाया।

व्यर्था गयो जिन हम जिन की तो सो विसरे सोरठ सो रस पीजिया कबहू ना फीका होए नानक राम नाम गुन गाई दर गए निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारई अंदर नाम निदान सदा गुण सारई एका टेक अगम मन तन प्रभ धारई लगा रंग अपार को न उतारई गुरमुख हर गुण गाए

नानक जो मथन मधाणिया त्यो मथे धर्म राय नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवै

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप अठो नंदन प्रथम राग पैर वह करही पंच राग ने संग उचरही प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगले पुन्य सलेखी की पई बारी ए पैरो की पंचो नारी पंचम हरख दसाग सुनाव है बंगाल मद माधव गाव है ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पातर द्वितीया मालक उसके आलाप है संग रागनी पंचो थाप है गुण करी हर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी पंचो गाई माल राखो सक संग लाई मारू माते अंग मेवारा प्रबल चंड कौसक्यो भारा खो खट्यो भौरा नद गाए अष्ट मालको सक संग लाए पुन्यायो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सत उठे तन कलोल गायन तार मिलावी तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस हीरी लै पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाय सरस बान ओहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन्याई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही आलाप का मोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कौंतलियो रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गोरा ओ कान रा कल्याणा अट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गावे पंचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गौरी गावे आसा वरी तै पाछे सिंधवी अलापी श्री राग स्यो पंचो थापी सालू सार्ग सागरा और गुण गंभीर अट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खाट मेघ राग वै गाव है पंचो संग बरंगन लाव है सोठ गुंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे सरसु हो पुन कीनी मेघ राग से पंचो चीनी बैरा तर गज तर केदारा जबली तर नट यो जल तारा

आखे सैद आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मन जन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाए इते कीते होर करे ता आख न सकै कई के जीवड पावै तीवड होए नानक जाणै साचा सोए जे को आख बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार सो दर केहा सो कर केहा जित बे सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी सो कहियना केते गावन हारे गावे तोहनो पौन पानी पै संतरा गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गोपत लिख जान लिख लिख धर्म विचारे गावे ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन अपाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावे जोद महाबल सूरा गावे खाने चारे गावे खंड मंडल ब्र वर भंडा गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर कर रखे थारे से तुदनो गावे जो तद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिह दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पत साहेब नानक रहण रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करे बिभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आही पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाके रिद सिद अवरा साध संयोग वजोग द्वेकार चलावे लेखे आवे भाग आदित से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिव तस भावै तिवे चलावै जिव हुए फरमान ओह वेख उन्हां नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदे तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश
ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼

0: उठत बैठत हर हर त्याइए अनदिन सुकृत करिए रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए कोट जन्म के किल बिख नासे हर चरणी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जा जी जंत सब पै पवित्रा सतगुर की सच साखी। बिघन विनाशन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पै सब पावन जन नानक सुख कर आया। बिघन विनाशन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पै सब पावन जन नानक सुख कर आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने और बख्शा कीतियां सेवक परिवार पास संगत पासों तुरकी बाणी श्री खंड पाठ साहिब की सेवा लई है। गुरु महाराज कृपा करन सारिया परिवारों के सिर ते मेहर परिवार सुख शांति चढ़ती कला कारोबार बरकता पावन सतगुरु जी पार बख्शा कृपा सदका संगत परिवार की चढ़ती कला वास्ते गुरु महाराज चरणा च अरदास बेनती हुई संपूर्णता तो उपरंत गुरु पातशाह जी ने पित्र हुक्म बख्शिश किए हैं। गुरु महाराज कृपा करन चढ़ती कला दत्त बख्शन। हूँ परिवार के जो आप जी मुखी सज्जन हो उन्होंने बेनती है गुरु घर वालों सरो पाओ बख्शिश प्राप्त करन जी। उपरंत गुरु महाराज जी के सुखासन गुरु महाराज अपने स्थान से जाएंगे। उपरंत परिवारों वालों जो हुक्म होया है थोड़े समय लिए बाहर कीर्तन होगा आप जी ने जरूर हार जी भरनिया जी। परिवार के मुख्य सज्जन बेनती है सरो पाओ बख्शिश प्राप्त करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कर सेवक नाही जम पेड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम अंतन आधार, बिसरत नाम होवत तन छार।

अबर स्यान पा बिरथिया प्यारे राखन कौतम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गर दियो स्वामी सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म पर।

ही मन राता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कवावा नानकी बेनांती स्वामी तेरे जन देखण पावा वड़पागी से काढ़िए प्यारे सत्संगत जिन्ना वासो अमृत नाम आराधिए निर्मल मने होवे परगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे जमकी चुके जमकी काणे तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणे ऊच अपार बेअंत।

हरी चंदौरी चित परम सखिए मृग तृष्णा द्रम छाया चंचल संग न चालती सखिए अंत तज जावत माया रस पोगण अत रूप रस माते इन संग सुख न पाया तन तन हर साध जन सखिए नानक जिनी नाम ते आया जाए पुसो पुछ जाए बसो बड़ भागणी सखिए संता संग समाइए तह भूख न दुख न रोग ब्यापे चरण कमन लिवलाइए तह जन्म न मरण न आवण जाना निःचल सरणी पाइए प्रेम बचहो न मोह ब्यापे नानक हर एक त्याइए दृष्ट तार मन बेद्या प्यारे रतड़े सहज सुभाए सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए।

कवन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन रहाओ, अनक जुगत कर बहुत विचारो साध।

सागल मनोरथ पाइए मीता, चरण कमल स्यों लाइए चीता। हों बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझे हर हर गुण गावत रहाओ। सफल जन

फिरो अभागे, देख कुसंबा रंगला काहे फूल लागे रहाओ। कर कर पाप धर्म किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जाके की शर्म करे ते बैर विरोधी,

रास सब ऊपर सम्राट प्रभ पूर्ण गुण तास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मह पाहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपारे दीन दयाल कृपा निधे सास

ज्यो भावै त्यो हो मोहे कृपत पाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बालक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही।

अपने सेवको कबूना बेसारो और लागो स्वामी प्रभ मेरे पूरब प्रीत गोविंद विचारो रहाओ पतित पावन प्रभ।

जोग जाग निफल तह मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनो कोट पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक हे बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बिलावल महला नामा जा मैं भजन राम को नाही।

मंग मान मुख जोनी दुख सहा मंग बंधन तुटेक नाम वसा मंग मन्ने नाम सच्ची पत पूजा किसे वेखा नाही को दूजा देख कहो पावे मन सोए नानक कहे अवर

0: होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: सुकरने हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते कीमत करते की

0: सोई सुखमन
1: करावण हार पाप जानवे
0: अंतर वसे बार भी ओही
1: नानक दर्शन देख सा मोही।

तुझ बिन कौन हमारा। आप जी ने सर्व श्रवण किया है, सो समय की समाप्ति है। आओ सारे लड़के आप आनंद साहब का जाप करिए, उस तो उपरांत अरदास गुनावा साहब होएगा। सो आओ सारे लड़के अपना।

दान विसाव दान प्रोत्साह दान दाना सिर दान नाम दान श्री मृसा जी दान चौंकिया झंडे बंगे जुगो जगा टल धर्म का जयकार खालसा सा बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत परदे राखे आप अकाल पुरख वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरु धाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मन सतगुरु नेताणियां दे तान सतगुरु ने ओठियां दी ओठ सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दे चरण कवलां पास अरदास बेनती जोधरी है गुरु पातशाह जी आप जी दियां प्यारियां संगतां ने आप जी दे चरणां दा ओट आसरा लैंदियां होइआं परिवार वल्लों भाई साहिब भाई जसपाल सिंह जी दी तंदुरुस्ती देह रुगता चढ़दी कला लई परिवार दे सुख शांति लई गुरु पातशाह जी दे चरणां नूं परसदियां होइआं आप जी दी पवित्र बाणी सुखमनी साहिब ते कीर्तन दी सेवा लई गुरु पातशाह परिवार दियां मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां परिवार विच सुख शांति तंदुरुस्ती देह रुगता दी दात तेरे चरणां नाल बण आवे सुआसां केसां नाल सिखी बख्शिश करना आपदे दर करदे प्रीतवान सरदार अमनदीप सिंह वल्लों सुखमनी साहिब दी सेवा परिवार तंदुरुस्ती देह रुगता चढ़दी कला दी अरदास करदे रहे गुरु पातशाह जी बच्चियां नूं उच्ची विद्या दा दान चरणां दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करना आप जी दे परिवार वल्लों सुखमनी साहिब दे सेवा लैंदिया होया परिवार दी चढ़दी कला तंदुरुस्ती देह रुगता दी दात दी अरदास करदे ने पातशाह जी भुपिंदर सिंह वल्लों परिवार दी सुख शांति चढ़दी कला तंदुरुस्ती देह रुगता दी दात बख्शिश करनी बीबी परनीत कौर वल्लों गुरु पातशाह जी उच्च विद्या लई परिवार दी चढ़दी कला दी चरणां दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करना आप दे चरणां पास अरदास बेनती जोधरी करदे ने अमृत वेले दी संभाल नाम दी दात चरणां दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करना हरजीत सिंह बीबी हरजोत कौर वल्लों बेटी मनरीत कौर बेटा जसराज सिंह दी तंदुरुस्ती देह रुगता परिवार दी सुख शांति चढ़दी कला लई अरदास बेनती है मनजीत कौर वल्लों अपनी बेटी परमदीप कौर दी देह रुगता परिवार दी सुख शांति चढ़दी कला तंदुरुस्ती देह रुगता दी वास्ते अरजोई बेनती करदे ने भाई साहिब भाई जगतार सिंह जी नूं संपूर्ण देह रुगता दी दात चरणां दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करना गुरु पातशाह जी बख्शिश सदका कल पातशाह ऑपरेशन बहुत वधिया होया है जल्दी जल्दी सेहत याब करना गुरु पातशाह अपने चरणां दा प्यार अपने दर घर दी सेवा नाल निवाजन बख्शिश करना बीबी भुपिंदर कौर वल्लों परिवार दी सुख शांति तंदुरुस्ती देह रुगता दी दात दी अरदास जी है चरणां दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करना परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना नाम दियां दातां बख्शिश करनियां सारी संगत वल्लों गुरु पातशाह दियां बख्शियां दातां विचों पंचमी कड़ा प्रसाद दी देख हाजरा दर परवान होवे परवानिया प्रसाद साध संग दे रसनी लैक होवे जो छके तेरा नाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपे भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी वल्लों आप जी ने सोहने रुमाले भेट किए गए ने आप अंगीकरण करना लोक परलोक च पढ़दे कज लैणे तेरे चरणां नाल बाण आवे सुआसां किसे नाल सिखी प्रेमा भगती बख्शिश करना ऐस वेले जी की अरदास श्री सुखमनी साहिब श्री चौपाई साहिब कीर्तन छे पौड़ी आनंद साहिब जी की अरदास अखर वादा काटा बुलचुक माफ करनी आई संगत दी हाजरी तिल फुल पेटावा दर घर विखे कीतियां सेवावां गुरु पातशाह थाए पौणियां हाजरी दर कर सचखंड के प्रवान करनी सारी संगत नूं संपूर्ण देह रुगता दी दात चरणां दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करना अमृत वेले दी संभाल बख्शिश करना गुरु पातशाह जीओ हाजरी दर कर सचखंड के प्रवान करनी दरों घरों पावन अटल हुक्मनामे बख्श के कृतार्थ करना सही प्यारे जन मिलना जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिताब है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

अमृत छाट बिखै बिखाहे माया मो परम पै पुल्ले सुत दारा स्यो प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रख सरनाए सुख होटल गुरु सेविया एहन सो सहज सो पाए दर्शन परस्या गुरु के

कहो नानक गुर खोए परम एको अलहो पार ब्रह्म राम कली महला पंजवा कोट जन्म के बिनसे पाप हर हर जापत नाही संताप गुर के चरण कमल मन वसै महाविकार तांते सब नसै गोपाल को जस गाओ प्राणी अकथ कथा साची प्रभ पूरन ज्योति ज्योत समाणी रहाओ तृष्णा भोग सब नासी शांत प्रसाद जपया अविनाशी रहन दिन

जुगत अब कीजै। जाते दुर्मत सगल बिनासै, राम भगत मन पीजै रहाओ। मन माया में उर्ज रेव है, बूझै न कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाकै सिमरै, पावै पद निर्बाना। उर्ज रेव।

कहूँ विहवे रसना साद कहूँ विहवे पर दर्ब चोर आई हर जन विहावे नाम त्याई कहूँ विहावे जोग तप पूजा कहूँ रोग सोग परमीजा कहूँ पवन तार जात बिहाई संत विहावे कीर्तन गाई कहूँ विहावे दिन रात चालत कहूँ विहावे सो पिड़ मालत कहूँ विहावे बाल पढ़ावत संत विहावे हर गुण गावत कहूँ विहावे नट नाटक निरति कहूँ विहावे जी इहिरती कहूँ विहावे राज में डरते संत विहावे हर जस करते कहूँ विहावे मसा मसूरत कहूँ विहावे सेवा जरूरत कहूँ विहावे सोदत जीवत संत विहावे हर रस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड़ नहीं को सियाना कर कृपा जे देव नाओ नानक ता कैबल बल जाओ राम कली महला पंजवा दावा अग्न रे हर बूट मात गर्भ संकट ते छूट जा का नाम सिमरत पौ जाए तैसे संत जना राखे हर राय ऐसे राखन हार दयाल जद कर देखो तुम प्रतपाल रहो जल पीवत ज्यो तिखा मिटंत धन विकसह ग्रह आवत कंत लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसाणी हर जन राखे कंठ लाए किरसाणी हर जन राखे कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बोछंद पिंगल पर्वत पति पार हर कै नाम सगर उधार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्राशत संत संग विनाश ज्यों साबुन का पर उजल होत नाम जपत सब भ्रम पखोत ज्यों जगवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों कुरंक नाद कर्ण समाने त्यों हर नाम हर जन मने सखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पहे ता पहे ती दया तारी तिन तारण हार बंधन ते होई छुटकार सावधान देखे आन अलोए तिस बिंदु जाय वरना कोय भ्रम पै छूटे गुर प्रसाद नानक पेखियो सब बिस्माद राम कली महला पंजमा जी जन सब पेखी है प्रभ सगल तुम्हारी धारना ई मन हर कै नाम उदारना रहो खिर मैं था बोथा पे कुदरत सब करते के कारना काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विदारना नाम जपत मन निर्मल होवै सुख है सुख गुदारना भगत

करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सुख मन होवे सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुरबान कीता गुरविटो जिस दियां ए वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागै कर सभागै।

तित कर अन हदवाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै वाजो, क्या करे बेचारिया, तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया, ईस न होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बाजो, क्या करे

तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तो दे पाई एक वेख प्रसन आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा।

संतां के कार्य आप खलो हर कम करावन आया राम। ये तुसीं जो सतगुरु जी पावन हजूरी च बैठते हो तो साध संगत कहिंदे तुहानू सारे नू साधु भी किया ते संत भी किया। जो इस तरह असं बैठते ना सतगुरु बड़ा सत्कार करते साडा कहते आवो संत प्यारे हो अकथ की करें कहा अकथ क्या वाहगुरु जी ने कि उहदी कोई गल करिए आओ वो संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई। बस ये मानस जन्म का जोड़ा मनोरथ है साढ़ा भी वह किमें पूरा करिए। फिर कहते तन मन धन सब सौंप गुरु को तन करके बैठे तुसी मन नहीं सौंपते असं ध्यान साढ़ा होर गल्लां च रहिंदा तन मन धन च लगी जा रहा श्वासां दा धन क्या जिहड़ा तुहाडा खर्च हो रहा हुण हजूरी च बैठ के जिहड़ा खर्च हुंदा वा ना वह सफल हो जाता धन श्वासां दा। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाई किते गुरु दा हुक्म मन लो ते पा लोगे ते हुक्म इहो ही है गुर प्रसाद जप पहले अंग ते जदों आपां पढ़दे आ ना सतगुरां दे दर्शन करदे आ पहले अंग ते हुक्म लिखिया की लिखिया जी गुर प्रसाद जप ते जप किहनूं वाहिगुरु नूं जिहड़ा आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच ते ओ तुसी जयकारा करना हुंदा वाहिगुरु दा। वाहिगुरु जिसका कार्य तिन्ही किया मानस किया बेचारा राम ते भगत भी किया तुहानूं भगत सोहन हर के गुण गावे भगत सोहन बड़े सोहने लगते कहिंदे भगत जदों दे गुण गाउंदे सदा करें जयकारा जिहड़ा करदे वाहिगुरु वाहिगुरु है ना किते गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी। ये तुसी हुण जिन्ना चिर गुण गाउणे आ ना जे ते ध्यान लग गया साडा वाहिगुरु च फिर आनंद आऊगा वो तुसी आप ही चैक कर लिओ है ना। लिखिया गुण गाए गोबिंद गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी। हुण आपां फिर ना मैनू कहना पवे अखां बंद रखणियां है ना क्योंकि मन जिहड़ा है ना इहनू आनंद देना हुण इह मन मेरिया तूं सदा रहो हरी दे नाल नहीं जुड़दा इह आपां कोशिश करदे आ ना वाहिगुरु जे तैने सुण लिया जुड़ जूगा ते नहीं तो नहीं जुड़दा इह भज जांदा। आपां इत्थे बोली जांदे आ ते पता नहीं किधर फिरदा ता ही उन्हें कहा ही प्रभु की उस्तुत करो संत मीत तुहानू कहा संत मीत सावधान जदों अखां बंद कर दे उदों ही मन एकागर हुंदा वा एक एकागर दा मतलब एक नहीं तो इत्थे दो हिस्सों च बैठा बाहर वेखी जांदा। इसलिए एकागर चीत किया उन्होंने जदों एकागर हो जाता उन्हें चित कहिंदे मन नूं उदों की कहिंदे जी मन नूं चित दशमेश भी तां कहिंदे एक चित जे एक छिन ते आयो काली काल की फाही जो निकल जाएगा पर हुंदा नहीं गा। पर हुण तुसी जदों बारंग बार बार प्रभ जपिए बार बार करोगे हो जाएगा सिखना ही हुंदा असीं कोई ध्यान नहीं करना इधर उधर जो मर्जी होई जावे फोन साइलेंट ते ला दिओ ठीक है जी ते आपां बड़े प्यार नाल जिहड़ा उच्ची बोलदा हौली बोले जिहड़ा हौली बोलदा उच्ची बोले ते इको ही सुरती हो जाए इको ही आवाज हो सब सुरती मिल तुहाडी जिहड़ी आवाज निकलनी है ना वाहिगुरु तुसीं इहदे विच सुरती जोड़ के वेखियो सारिआं दी आवाज दे विच इहनूं साधुआं दी धूड़ी कहिंदे आ माघ मजन संघ साधुआं तुहानूं साधु कहिंदे धूड़ी कर इह फिर मन बड़ी छेती निर्मल हुंदा जदों साधुआं दी धूड़ी इहनूं मिलदी है। उत्थे लिखिआ हर का नाम ध्याए सुण
ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਗਈ ਨਾ, ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਵੰਡਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਸੁਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਘੁੰਮਰ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ

संतां के कार्य आप खलोया, हर काम करावन आया राम। संतां के कार्य आप खलोया, हर काम करावन आया राम। जदों संगत च आपां बैठदे आ तुहानूं संत कहिंदे, जिहड़े फिर उहदा नाम जपदे आ उहनां दे लोक दे काम वी ते परलोक दे वी दोवें सवारदा वाहिगुरू। ये लोक सुखी है परलोक सहले, पर किन्हां दे जन लागा हरेके नाए, ये शर्त आ। गुरबाणी गुरु जी कंडीशनल ने, कंडीशनल कंडीशनल हुंदा वी इदां करोगे ते इदां हो जाएगा। बाणी गुरु हुण ध्यान नाल सुननी गल, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत, सारे गुर बाणी कहे। आपां सारे सेवक हैं, सेवक जन माने, प्रतख प्रतख तुहाडे सारे कार्ज करूगा वाहिगुरु, प्रतख करदा वा। आपां उन्ना चिर कोई काम नहीं करदे जिन्ना चिर सानूं फायदा नहीं हुंदा। कई पुछ लेंदे जी ये वाहेगुरु जपण नाल की होएगा, ते पंजवें पातशाह दे बचन ने हर राम राम राम राम, हर वाहेगुरु नूं कहा राम राम राम राम, जप पूर्ण होए कम। सतगुरु वेखो यह रहाओ वाली पंक्ति है गौड़ी माझ राग दे विच, भी सानू पता लगे भी आ वाहगुरु का नाम जपते पे हाँ, होएगा की कि राम गोबिंद जपेंद्या होआ मुख पवित्र, क्यों वाहगुरु पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपत नानक मन। देखो जप जेड़ा ना सारा एक ओंकार तो लैके, जप तो ही बाणी शुरू की सतगुरु ने, जप ते ही जाके खत्म कर दे जी, ये करना ही पैना वा। राम गोबिंद जपेंद्या हुआ मुख पवित्र। हुण जिहड़े पुछदे गुरमुख प्यारे कि ये तुसी बोली तो जांदे हो इहदे नाल फायदा की होएगा, कई बहुते पढ़े लिखे जे वो इस गल नूं मनदे नहीं, है ना। तो सतगुरु पंजवें पातशाह कहिंदे बारंग बार बार प्रभ जपी, बारंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत ए, इत वाहगुरु कहने वाली मुख च अमृत आ जाता। तुम वेख लिया होना